हाय दोस्तों, स्वागत है आपका लम्हे प्रोग्राम में और मैं हूँ आपका आरजे चेतन। आसपास के वातावरण साफ सुथरा हो तो किसे अच्छा नहीं लगता है, और इसमें नगर निगम और स्वच्छता कर्मी का बहुत बड़ा योगदान रहता है। वो तो अपने तरफ से पूरा योगदान देते हैं, परंतु इसके बावजूद कुछ लोग गंदगी और कचरा करने से बाज नहीं आते। वह भी इंसान ही है, आखिर कितना साफ करेंगे। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने आसपास को साफ रखने की जिम्मेदारी स्वयं ही करना है, ताकि साफ सफाई से हम स्वस्थ रहे और हमारा वातावरण भी स्वच्छ रहे। आसपास की रखो सफाई, इसमें हम सबकी भलाई। स्वच्छ रखेंगे वातावरण, स्वस्थ रहेंगे हम हर पल हर क्षण। घर को हर दिन करें सफाई। हमें हमारे घर के हर रोज सफाई करना चाहिए। वह कचरा इकट्ठा नहीं होना देना चाहिए, इससे कीटाणु पनपते हैं और बीमारियां फैलती है। घर में कुछ ऐसे कोने होते हैं जिसे नियमित रूप से सफाई करना चाहिए, जैसे रसोई घर। रसोई घर जहाँ हमारा भोजन इत्यादि बनता है, उसकी सफाई नियमित होना चाहिए। बर्तन को अच्छी तरह से साफ रखना चाहिए। गैस स्टैंड बर्तन रखने की जगह सभी जगह साफ करना चाहिए। रोज किचन की झाड़ू लगाना चाहिए, ताकि खाने के साथ हम कोई गंदगी अपने खाने में आने न दे और साफ सुथरा भोजन ही खाए, साफ सुथरा किचन रखे। नियमित पोंछा और धोने जैसे सामान को धोए, बाथरूम को रोज साफ करें, दीवारें साफ करें, कुछ अच्छे से एंटीमाइक्रोबियल यूज करके साफ करें तो और भी अच्छा है। जहाँ हम हमारी गाड़ी रखते हैं, वहाँ रोज झाड़ू लगाए और बगीचे में सफाई रखे हो। कोई भी कचरा और प्रयोग में न आने वाले सामान को इकट्ठा न होने दे। यदि हम हमारे किचन, बाथरूम और पूरे घर में साफ सफाई नहीं रखेंगे, तो चचुंडर, कॉकरोच, मक्खी, चींटियाँ, मच्छर आदि पनपते हैं। और साफ सफाई में अगर हम लापरवाही बरतते हैं, बर्तन और अन्य सामानों के साथ ये गंदगी हमारे मुंह में जाते हैं, जिससे हमें कई तरह के बीमारियां पकड़ लेते हैं। यदि मच्छर पनपते हैं तो मलेरिया, कॉलरा, निमोनिया, पीलिया या सब बीमारी होती है जो कि गंदगी की वजह से फैलती है। इसीलिए हमें हमारा घर और आंगन की सफाई पर नियमित ध्यान देना चाहिए। इसीलिए पूरे घर पर नियमित झाड़ू और पोंछा लगाना चाहिए। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com।

0: gmail.com। धूल इत्यादि को पहुंचने और बगीचे में कहीं भी पानी नहीं होने देना चाहिए। किसी भी तरह की गंदगी बीमारी का लक्षण होता है, इसीलिए बचना चाहिए और नियमित साफ सफाई करना चाहिए। कुछ लोगों का सोचना है कि जहां गरीब व्यक्ति रहते हैं वही ज्यादा गंदगी होती है, परंतु ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि गरीबी और साफ सफाई का दूर दूर तक कोई मेल नहीं है। गरीबी तो इंसान की मजबूरी है, परंतु सफाई तो उसकी जिम्मेदारी है। इसके लिए अमीर या गरीब मायने नहीं रखता, और घर की साफ सफाई में सबकी बराबरी से हाथ बांटने की मंशा होनी चाहिए। केवल घर के बड़े, जिसमें माँ होती है, माँ घर के हर काम को करती है, तो क्या ये घर केवल माँ का होता है? उसमें रहने वाले सभी सदस्यों का नहीं होता है? इसीलिए सभी सदस्यों को मिलजुल कर इसकी जिम्मेदारी उठाना चाहिए, और ये सोच परिवार के हर सदस्य के नजरिए पर निर्भर करता है। बचपन से ही बच्चों की देखभाल माता पिता और घर के अन्य सदस्य करते हैं, लेकिन बच्चे जब थोड़े बड़े होने लगते हैं तो उन्हें आपको सिखाना होगा कि साफ सफाई रखना जरूरी है। बचपन से ही उसे अपनी सफाई की शिक्षा दे, साथ ही उसे अपने आसपास की जगह को साफ रखना सिखाए। उसे बताए कि अगर साफ सफाई नहीं रखी जाएगी तो बीमारी होगी, और बीमारी होगा तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इसीलिए उसे बताए कि अपनी साफ सफाई रखे और अपने आसपास की जगह को भी साफ रखे। साफ सफाई में अपने बड़ों की मदद करे, इससे वह भी साफ सफाई करना सीखेगा और स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com।
1: साफ सफाई इंसान की फितरत होती है। वह अपने घर के आसपास तो साफ रखते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं घर ही को अपना समझते और अपने घर के बाहर झूठा और जो भी कचरा होता है उठाकर बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि उनकी जिम्मेदारी केवल घर के अंदर तक ही सीमित है। इसीलिए अपना फर्ज भूल जाते हैं, और ये भूल जाते हैं कि सड़क, अपने घर का बगीचा साफ रखना उनकी जिम्मेदारी है। सड़क से ही गंदगी हमारे घर तक आती है, और इसके साथ ही कई तरह की बीमारियां भी लेकर आती है। इसीलिए स्वयं साफ सफाई रखें, और जो कर्मचारी और नगर निगम की गाड़ियां आती है उसमें अपने घर को साफ रखकर उन्हें अपना पूरा योगदान प्रदान करें। इस प्रकार हम हमारे घर के और आसपास की सफाई हमारे स्वास्थ्य के साथ ही वातावरण को भी साफ रखते हैं, और इसका प्रथम पाठ हम हमारे घर से ही मिलता है। यदि हम हमारे घर को और हमारे आसपास के वातावरण को साफ रखेंगे तो धीरे धीरे शहर और शहर, देश, सभी जगह सफाई दिखने लगेगा। प्रदूषण में जमा हमारे देश की गिनती निचले स्तर पर की जाती है, वही हमें आगे और आगे प्रथम स्थान पर लाना होगा, और इसकी शुरुआत हमें हमारे आसपास के वातावरण से शुरू करना होगा। देश की सफाई एकमात्र सफाई कर्मियों की जिम्मेदारी नहीं है। क्या इसमें नागरिकों की कोई भूमिका नहीं है? हमें इस मानसिकता को बदलना होगा। विद दिस लवली कोट, दिस इज चेतन साइनिंग ऑफ फॉर टुडे इन लम्हे प्रोग्राम। आई विल गेट बैक टू यू इन आवर नेक्स्ट प्रोग्राम। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।
0: दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।
2: റീഗൽ ജ്വല്ലേഴ്സ് ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ വില
3: എന്നും രാവിലെ 10:30
2: പ്രായോജകർ.
3: ഇനി റീറ്റെയിൽ പണിക്കൂലിയില്ല, ഹോൾസെയിൽ പണിക്കൂലി മാത്രം.
2: റീഗൽ ജ്വല്ലേഴ്സ്, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കൊച്ചി ആൻഡ് തിരുവനന്തപുരം.

0: जगजीत सिंह की आवाज में अभी आपने सुना ये गीत फिल्म अर्थ से। कैफी आजमी का लिखा गीत था कुलदीप सिंह का संगीत।
1: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
2: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है। वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं है।
1: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
2: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्युलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
3: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना।

0: हैं गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
2: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
0: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
2: सुबह और शाम
0: 6:45 पर
2: सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं स्वयंवर फिल्म से। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें, गुलजार के बोल, राजेश रोशन का संगीत।

0: दिसंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।
3: रात जी आ रही दिल अंधेरा है।
1: अनमोल यादें देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
4: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आशा से, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों के स्वरों में। आनंद बख्शी ने इस गीत

लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों के सुरों में आशा फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब यहीं संपन्न होता है। चित्रपट संगीत का ये सफर आपने तय किया पूजा नारायणिया के साथ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में सुनेंगे

0: आज के मैटिनी शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित शूटिंग कोच नेहा चौहान से यूनुस खान की बातचीत।
1: विविध भारती के स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ हैं शूटिंग कोच नेहा चौहान। नेहा, बहुत बहुत स्वागत आपका।
2: थैंक यू सो मच।
1: मुझे ये बताइए कि एक रेडियो स्टेशन में आके जो पहली फीलिंग है वो क्या थी आपको?
2: आई गेस रेडियो स्टेशन के अंदर मुझे ऐसे लगा कि म्यूजिक मेन, सो जो हम म्यूजिक के जो अलग अलग पुराने जो डिस्क आपने हमें दिखाए तो उसकी जो खुशबू थी जो एक ओल्ड खुशबू थी दैट वाज ब्यूटीफुल। आई थिंक वो खुशबू और इतनी शांति जो है ये बहुत ही, आई थिंक आई वाज सो हैप्पी टू बी हियर।
1: अच्छा ये बताइए कि शूटिंग से नाता किस तरह से जुड़ा था आपका और क्या आपने शूटिंग से ही शुरू किया था या किसी और खेल से शुरू किया था?
2: सो, बचपन से हमने स्पोर्ट्स बहुत प्रायोरिटाइज किया था, मेरे पेरेंट्स ने, माय फादर, तो मेरे भाई और मैं हमेशा स्पोर्ट्स में थे।
1: लेकिन क्या माता पिता के साथ भी स्पोर्ट्स की परंपरा थी?
2: ऐसे तो नहीं थी, लेकिन मेरे फादर खेलते थे, उनके कॉलेज में बॉक्सिंग करते थे, वॉलीबॉल खेलते थे, तो मेरे जो चाचा है वो क्रिकेट खेलते थे, तो आई गेस हमारी फैमिली में स्पोर्ट्स, हम खाते पीते बस स्पोर्ट्स के बारे में ही बात करते रहे। तो आई गेस दैट इज हाउ हम इंट्रोड्यूस हुए स्पोर्ट्स से। तो कोई भी चीज बिना स्पोर्ट्स की हमारे यहाँ पे शुरुआत ही नहीं होती थी और एंड भी नहीं होता था। तो वैसे ही शूटिंग का जो इंट्रोडक्शन जो हुआ है वो मैं 8th क्लास में थी और हमारे यहाँ पे हमारी स्कूल जो शैलेंद्र एजुकेशन सोसाइटी स्कूल है तो वहां पे एक शूटिंग रेंज, एक मेक टू शिफ्ट शूटिंग रेंज का इंट्रोडक्शन किया गया था थ्रू एनसीसी, नेशनल कैडेट कॉर्प्स के। तो वो एक स्कूल लेवल नेशनल कैडेट कॉर्प्स था जो हम 8th एंड 9th क्लास में करते थे, तो वैसे हमारे स्कूल में इंट्रोड्यूस करा था।
1: तो सबसे पहले गन तब हाथ मिली थी?
2: तब गन हाथ मिली थी, यस यस।
1: वो कैसी फीलिंग थी?
2: इट वॉज गुड। गन्स किसको पसंद नहीं आती है, मतलब कुछ अलग फीलिंग होती है आपको। जैसे हम जो मेले में हम शूट करते हैं, गुब्बारे जो शूट करते हैं, तो आई गेस वहां से तो स्टार्ट होता ही है सबका, लेकिन वो स्कूल में वो फीलिंग बहुत अच्छी थी। और ऑनेस्टली स्पीकिंग जब मैंने पहली बार चलाए थे तो एक भी शॉट टारगेट पर नहीं लगा था, तो आई गेस यस यस, बट वो काफी एक अच्छा कुछ डिफरेंट करने का जो एक फीलिंग है वो, क्योंकि हमेशा बंदूक हम देखते हैं कि यू नो आर्मी मिलिट्री एंड मूवीज में देखते थे,
1: बिल्कुल,
2: बट खुद हमें करने मिलता है, सो आई थिंक इट इज अ ग्रेट फीलिंग।
1: और किस तरह से फिर शूटिंग की दुनिया में आपके कदम स्कूल के समय में आगे बढ़ते चले गए?
2: तो स्कूल में जो इंट्रोड्यूस किया गया तो स्कूल में आफ्टर स्कूल आवर्स शाम को प्रैक्टिस करते थे हम लोग, तब इतना कंपटीशन का ये नहीं था, सो ये मैं 98-99 की बात कर रही हूँ, तो इतना कंपटीशन का एक्सपोजर नहीं था तब, तो हमने स्कूल लेवल पे खेले काफी स्कूल गेम्स वगैरह। तो उसके बाद स्कूल का जो जर्नी था वो फिर मुझे इंटरेस्ट आया कि नहीं ये कुछ अलग है और इंडिविजुअल स्पोर्ट है तो आपको खुद के बारे में काफी जानने को मिलता है, तो आई थिंक वहां से जो स्टार्ट हुआ। फिर रुइया कॉलेज में हमारी एक शूटिंग रेंज बन गई थी, तो वहां पे फिर मैं रुइया कॉलेज में शूटिंग करती थी, तो वैसे ही ये जर्नी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ऐसा खेल खेल के नेशनल में मैं सिलेक्ट हुई थी
1: जी।
2: और वैसे ही ये जर्नी आगे बढ़ी।
1: ये जो कॉलेज के जमाने से शूटिंग करना और उसके बाद नेशनल तक चले जाना, ये सफर कितना चैलेंजिंग था? क्योंकि स्कूल और कॉलेज अलग दुनिया होती है और नेशनल तक चले जाना, उसके बीच का सफर जो है उसमें काफी जद्दोजहद रही होगी।
2: सो मुंबई में रेंजेस इतने नहीं थे जो शूटिंग रेंजेस है, एक जो रेंज है जो महाराष्ट्र राइफल एसोसिएशन है जो वर्ली में है, तो वो एक रेंज है जहां पे शूटिंग की

0: जाती थी, और एक चेतना कॉलेज करके है बांद्रा में, वहां पे एक ये था। तो दो तीन जगह जहां पे थी वहीं पे ये स्पोर्ट खेला जाता था, और हमारे स्कूल में उसका इंट्रोडक्शन दिया गया था, क्योंकि जो चेतना कॉलेज में जो कोचिंग कर रहे थे वो यहाँ पे भी आए थे इंट्रोड्यूस करने के लिए, स्कूल में देखने के लिए कि यहाँ पे शूटिंग करा जा सकता है क्या। तो आई गेस वो जर्नी जो थी, स्कूल तो हमारा घर से 5 मिनट ही था तो वहां पे तो आसान था, लेकिन स्कूल से हम जब कहीं और दादर में जब रुइया कॉलेज जाना पड़ा तो वो टाइम पे स्कूल कॉलेज मैनेज करना वो, और फिर भी अपना स्पोर्ट खेलना, आई गेस मुंबई में अगर आप दहिसर में रह रहे हो और आपको दादर जाना है तो तब 1 आवर का जो ट्रैवल था ट्रेन में, सो मॉर्निंग हम 6 o'clock को निकलते थे, 7 o'clock के लेक्चर्स अटेंड करके फिर दोपहर में शूटिंग का ट्रेनिंग करके एक्सरसाइज वगैरह पूरा करके हम 9:30 को मैं घर आती थी
1: रात को।
0: यस रात को।
1: अरे बाप रे, ये तो बहुत 15-16 घंटे का।
0: यस यस, तो वो तो जर्नी वैसी ही ट्रैवल और जो भी ट्रेनिंग, और तो एक प्रकार का, और वो एनर्जी अलग थी, डिसिप्लिन ही अलग था, क्योंकि सब आपके साथ, बहुत सारे आपके साथ आपके कलीग्स जो थे वो भी करते थे, तो वो फन था शूटिंग तब, स्पोर्ट ये फन था, और वैसे ही शुरुआत हुई कॉलेज के, और उसी में फिर नेशनल के लिए हम क्वालिफाई कर दिए।
1: जी, मेडल्स मिलने की शुरुआत कहाँ से हुई थी?
0: मेडल्स मुझे यूनिवर्सिटी से शुरुआत हुई थी, यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप से स्टार्ट हुए थे, जहां पे मैंने एक फर्स्ट टाइम मैंने 400 में से 397 शूट किया था। आई थिंक दैट वाज अ रिकॉर्ड, यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड, तो वो तब किसी ने शूट नहीं किया था। एंड उसी के साथ स्टेट मेडल्स एंड फिर नेशनल्स में, फिर मैं नेशनल्स में मेडल्स मिलना शुरू हो गया था, तो वैसे ही थोड़े थोड़े जोड़ जोड़ के स्टेट नेशनल्स यूनिवर्सिटी ऐसी शुरुआत हो गई थी।
1: क्या बात है। अच्छा, एक अच्छे कोच की क्या भूमिका होती है और आपकी जिंदगी में वो कोच कौन और कब आए?
0: कोच की भूमिका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एंड वो मुझे कोच बनने के बाद ज्यादा रियलाइज हुआ
1: बिल्कुल
0: कि कितना इम्पैक्ट एक कोच का होता है। मेरे लाइफ में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल मेरे कोच ने, मिस्टर संजय चक्रवर्ती, जो अंजलि भागवत, गगन नारंग और सुमा शिरूर, दीपाली देशपांडे, उनके कोच रह चुके थे। सो आई थिंक उन्होंने बहुत ही एक परसिस्टेंस जो होता है, डिसिप्लिन तो आई गेस हर एक स्पोर्ट की जरूरत है, हर एक लाइफ की जरूरत है, तो आई गेस वो तो उन्होंने सिखाया, लेकिन कंपटीशन को किस तरह आपको देखना है, एंड सिंस हमारा स्पोर्ट एक मेंटल स्पोर्ट है
1: बिल्कुल,
0: तो उसकी जो तैयारी करनी है वो उन्होंने, उनका इम्पैक्ट मुझ पे बहुत रहा है।
1: शूटिंग जो है वो, जैसे कि आपने कहा, एक मेंटल गेम है, तो धीरज, फोकस, ये सब कैसे मेंटेन किया जाता है, उसका रूटीन क्या होता है? जब आप खुद शूट करती थी तो अपने आप को किस तरह प्रिपेयर करती थी?
0: सो जब मैं शूट कर रही थी इतना एक्सपोजर नहीं था इन बहुत सारी चीजों का, तो हमारे लिए तो कोच ने कहा इतना आपको करना है, ये ब्रीदिंग प्रैक्टिस करनी है, या ये ट्रेनिंग की प्रैक्टिस करनी है, या फिजिकल ट्रेनिंग करनी है, सो दैट वॉज, एंड यही आपका काम है, उसके अलावा कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, कहीं बाहर जाना नहीं है, कहीं पार्टी पे नहीं जाना है, कोई बर्थडे पे नहीं जाना है। आई गेस वो बहुत पहले मैं स्कूल और कॉलेज से ही मुझे वो समझ में आ गया था कि आपको अगर कोई चीज करनी है तो आपको इन डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, ये हमारे कोच ने हमें बहुत पहले बता दिया था, एंड मुझे लग रहा है वही कॉन्सेंट्रेशन बना और वही चीज रिपीट कि दिन में इतने बजे उठना है, ये आपका रूटीन है, ये करना है, कॉलेज के लेक्चर्स अटेंड करने हैं, फिर आपको 3 घंटा प्रैक्टिस करना है, फिर आपको 2 घंटा एक्सरसाइज करना है, फिर वही चीज आपको रूटीन में अगले दिन वही करना है। सो आई गेस वो चीज हमें वो बताई गई थी हमारे कोच ने और वही हम करते गए
1: बिल्कुल।
0: बट आज अगर आप मुझे पूछते हैं कि फोकस की प्रैक्टिस कैसे की जाती है या कंसंट्रेशन, तो हमारे यहाँ अभी काफी स्पोर्ट्स साइंस का एक बहुत इंक्लूजन हुआ है, जहाँ पे साइकोलॉजिस्ट है, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट है, जो आपको बताते हैं कि स्पोर्ट को कैसे हैंडल करना है,
1: मेंटल तैयारी
0: क्या करनी है, आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, क्या खाना है ताकि आपका फोकस अच्छा रहे, जल्दी सोना है। हम तो पहले, मतलब हम थक जाते थे और सो जाते थे, तो इतना

0: एक्सपोजर नहीं था मोबाइल फोन का, तो वो कॉन्सेंट्रेशन अपने आप, वो 3 घंटे में अपने आप हम फोकस हो जाते थे।
1: बिल्कुल। अच्छा, बतौर शूटर जो आपका करियर था वो किस तरह चला और वो कौन से हालात थे जिन्होंने आपको कोच बना दिया?
0: सो आई गेस एज अ शूटर, तो सबसे पहला तो हमने जो स्टार्ट किया है वो एक स्पोर्ट के दौर पे, एक यू नो फिजिकल स्पोर्ट है तो आपको आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा रखना है, तो वो ही एक गोल था। उसके बाद जब 2-4 साल के बाद जब मेडल्स मिलने लगे, देन आप थोड़े से ड्रीम करने लगते हैं कि ओके अभी इसके बाद क्या है, तो आप आपके आजू बाजू में जो इंस्पिरेशन है आप देखते हैं। तो आई गेस वो देख के तो सबसे पहला मेन कि ओलंपिक्स में जाना है या इंटरनेशनल में जाना है, तो वो गोल कॉलेज के टाइम हमने काफी वो सोचने लगे थे हम उस बारे में। एंड उसके बाद आई डोंट थिंक कि शूटर के बाद मैंने कभी एज अ शूटर सोचा था कि मैं कोच बनूंगी।
1: अच्छा।
0: आइडियली मैंने रुइया कॉलेज से मतलब इकोनॉमिक ऑनर्स किया था एंड देन फिर मैंने एमबीए किया था।
1: एमबीए करने की क्या वजह?
0: yes. नहीं, एक साइड में बैकअप प्लान, बिकॉज स्पोर्ट के साथ एक
1: एजुकेशन
0: बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया एजुकेशन ने। मुझे ऐसे लगता है कि उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए स्पोर्ट को आपको बहुत जरूरी है एजुकेशन के ऊपर भी ध्यान देना, क्योंकि वो एक बैलेंस देता है आपको। तो मैं हमेशा चाहती थी कि कुछ भी हो जाए मैं स्पोर्ट करूंगी लेकिन मैं एजुकेशन को बैलेंस रखूंगी। तो आई गेस जब 2013 के अराउंड काफी मैंने आई थिंक 12-15 साल शूटिंग करने के बाद आई वॉज नॉट सो हैप्पी विद द वे शूटिंग हो रहा था, तो मैंने सोचा कि नहीं अभी एक थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, क्योंकि शूटिंग जो स्पोर्ट है हमारा वो उसका कोई एज लिमिट नहीं है, तो आपको मतलब आप 50-60 तक आप शूटिंग कर सकते हैं, तो उसका सेंस एज लिमिट नहीं है, तो आप उसको छोड़ने का मौका आता नहीं है आप में, क्योंकि फिजिकल स्पोर्ट में तो आप इंजर्ड होते हैं या यू नो
1: कोई लिमिट आती है
0: तो शूटिंग स्पोर्ट में वो लिमिट नहीं है। तो जब 2013 में मैंने सोचा कि नहीं अभी ये बैकअप तो है हमारे पास, तो लेट्स आप शूटिंग की जगह थोड़ा सा कॉर्पोरेट में देखते हैं कि क्या है, तो मैंने 5-6 मंथ्स में एक एचआर के ऑर्गेनाइजेशन में थी मैं, बट मैं बिल्कुल खुश नहीं थी वहां पे, बिकॉज इतनी पूरी जिंदगी आपकी स्पोर्ट में गई, आपके बहुत इम्पोर्टेंट डेज ऑफ योर करियर और लाइफ के जब स्पोर्ट में जाते तो आप बहुत लॉस्ट फील करते हैं अचानक एक ऑफिस में कंस्ट्रेंट होके। फिर 2014 में एक जो गन फॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी है, गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन, जो गगन नारंग जी है जो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, तो उन्होंने एकेडमी कुछ 15 साल पहले ओपन की थी अराउंड 2011-12 में, और हमने गुजरात में ग्रास रूट लेवल प्रोग्राम शुरू करना था, तो उन्होंने मुझे ऐसे ही पहुंचा क्योंकि हम लोग सब साथ में शूटिंग करते थे, तो उन्होंने कहा कि कोई कोच हो तो आप बताइए, तो मैंने फिर बोला कि ठीक है मैं देख के बताती हूँ कि कोई कोच होगा जो वहां पे इंटरेस्ट रखेगा जाने के लिए। तो ऐसा तो कुछ नहीं, फिर मैंने सोचा, फिर मैंने घर पे बात किया, मतलब कि क्या मैं जा सकती हूँ क्या गुजरात और एक्सप्लोर कर सकती हूँ ये क्या है। तो जॉब अच्छी थी मेरी, आई वॉज डूइंग गुड, घर वालों ने मुझे कहा, मेरे फादर ने कहा मुझे कि देखो तुमने इतने साल तुम्हारा पैशन खुद एक्सपीरियंस किया है, तुमको जाना है तुम देखो जाके। तो ऐसे ही अहमदाबाद में एक स्कूल संस्कार धाम है, वहां पे हमारा ये टैलेंट एंड प्रोग्राम था गन फॉर ग्लोरी का, तो हम वहां पे गए वो स्कूल में, तो वो वहां के गुजरात के गांव से बच्चे आए थे काफी 12-13 साल के, तो वो ऐसे वो एक प्रोग्राम एक था गवर्नमेंट का, तो वो प्रोग्राम हम एक्सप्लोर कर रहे थे और वहां से हम टैलेंट लेके हम ट्रेन करने, तो मुझे कोचिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था बिल्कुल भी नहीं, और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कोच बनूंगी कभी। तो वैसे कोचिंग का जर्नी मेरा शुरू हुआ।
1: गजब। और आज ये स्थिति है कि बहुत स्टार खिलाड़ी जो हैं वो आपकी निगरानी में तैयारी कर रहे हैं, तो उन खिलाड़ियों के बारे में बताएं जिन्होंने बहुत नाम कमाया और इस वक्त आपके साथ सीख रहे हैं।
0: सो गुजरात से जो खिलाड़ी हमारी बनी थी वो है इलेवन इलवालर इवन, जो एक अर्जुन अवार्डी है, दो बार ओलंपिक खेल चुके हैं।
1: वो गुजरात में ही मिली आपको?
0: यस, जो प्रोग्राम हम रन कर रहे थे तो वो वहां पे उस प्रोग्राम के अंडर आए थे।

0: किसी गांव से आई थी?
1: नहीं, वो शी वॉज फ्रॉम सिटी, वो गुजरात से ही थे, तो हमारे 2-3 प्रोग्राम्स थे, उनको वो जोड़ के हम वो प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे थे, तो वो टैलेंट सर्च से वो आए थे, तो वहां से उनकी शुरुआत हुई एंड आज भी हम साथ में हैं। शी इज एन अर्जुन अवार्डी वर्ल्ड नंबर 1, सो आई गेस वहां से उनकी शुरुआत हुई थी, उनकी जर्नी की भी। और अभी जो धनुष श्रीकांत है, जो 2 बार डेफ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, सो आई गेस वो 2 एथलीट्स ऐसे थे जहां से उनकी मतलब शुरुआत हुई थी। धनुष है तेलंगाना से, हैदराबाद से है, तो बट के सारे हमारे गन फॉर ग्लोरी एकेडमी का हिस्सा है, आज भी है। और बहुत सारे ऐसे एथलीट्स है, उमा महेश करके है, रमिता जिंडाल जो हरियाणा से है, जो पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में शी वॉज इन टॉप 8, तो वो भी हमारे साथ है, हमारी एथलीट है। तो ऐसे बहुत सारे एथलीट्स के साथ काम करने का मौका मिला।
0: ये जो आपके प्रिय 2 टॉप एथलीट हैं, इनको आप कितने साल से सिखा रही हैं?
1: इलावेनिल को मैं सिखा रही हूँ पास्ट मोर देन 12 इयर्स से, और धनुष को भी 10 साल से वो मेरे साथ में है
0: जी।
1: और काफी दूसरे एथलीट्स भी जो है वो भी आज 8-8, 10-10 साल से साथ में है।
0: तो आपका ही जो तकरीबन 1 डेकेड से ज्यादा का कोचिंग का ये सफर है, जाहिर है पहले तो कोई ट्रेनिंग नहीं थी कोचिंग करने की, कोच बनने की, ये सेल्फ लर्न मामला रहा है सारा, आपने खुद को ऑर्गेनिकली डेवलप किया बतौर एक कोच?
1: सो स्टार्टिंग में ऑफ कोर्स बहुत लोगों के गाइडेंस मिले, जैसे गगन नारंग जी जो ओलंपिक मेडलिस्ट थे, तो उन्होंने काफी कोचेस को देखा हुआ था, पूरे वर्ल्ड में देखा हुआ था। मैं खुद मैंने काफी कोचेस के साथ मैंने ट्रेनिंग करी हुई है, तो बहुत लोगों के स्टाइल्स हमें पता थे, तो वैसे वो जर्नी गाइडेंस के थ्रू स्टार्ट हुई। लेकिन बहुत बड़ा मौका मुझे 2017 में हमारा जो सबसे बड़ा चेंज आया कोचिंग का, क्योंकि इतना कोचेस को सिखाने का इंडिया में आई थिंक बहुत सारे कम कोर्सेस थे, बट कोचिंग कैसे करते हैं वो कोर्सेस नहीं थे। तो 2017 में हमारी एकेडमी ने एक प्रोजेक्ट लीप करके एक प्रोग्राम था, और उसके साथ ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट करके जो है उन्होंने कोचेस एक्सेलेंस प्रोग्राम शुरू किया था। तो उस कोचेस एक्सेलेंस प्रोग्राम के अंडर शूटिंग और बैडमिंटन थे, और कोचिंग कैसे करते हैं, आपको कोचिंग एथलीट को कैसे करनी है, वो कोर्सेस शुरू हो गए थे। वो उस पर्टिकुलर जो कोचेस एक्सेलेंस प्रोग्राम का मेरे पे बहुत बहुत मुझ पर इम्पैक्ट रहा है, और उसमें लाइफ लेसन्स कोच ने कैसे एथलीट को बनाना है, वहां से शुरुआत हुई।
0: अच्छा, जिस जमाने में आप खेलती थी तब टेक्नोलॉजी का उतना असर नहीं था, आज हर खेल में टेक्नोलॉजी का दखल बहुत बढ़ गया है, तो कितना हेल्प करती है आज टेक्नोलॉजी बतौर कोच आप जब सिखाती हैं शूटर्स को?
1: सो टेक्नोलॉजी हमारे इसमें टेक्निक, ये किसी भी एथलीट को, टॉप एथलीट शायद बिकॉज वो बाहर खेलने जाते थे तो वो एक दूसरे को देख के बाहर के कंट्रीज में देख के सीख लेते थे, तो वही टेक्निक्स जो आती थी वो इंडिया में वो लेके आते थे, और हम पे हम शेयर नॉलेज शेयरिंग जो बोलते हैं वो शेयर किया जाता था। तो टेक्नोलॉजी एज सच तो कुछ भी नहीं था। अभी जो फास्ट फॉरवर्ड, आप 10-15 साल फास्ट फॉरवर्ड में बोल सकती हूँ कि काफी इक्विपमेंट ओरिएंटेड हमारा गेम हो चुका है, सो काफी एप्लीकेशंस और काफी टेक्निकल चीजें आई हुई है, टूल्स आए हुए हैं जो आपको मॉनिटर कर सकते हैं, आपका स्पोर्ट मॉनिटर कर सकते हैं।
0: अच्छा, मुझे ये बताएं कि भारत पूरी दुनिया में शूटिंग के मामले में कहां पड़ता है और क्या भविष्य है हमारा?
1: भारत आई थिंक आप अगर देखोगे तो शूटिंग के जो ओलंपिक मेडल्स है वो बहुत ही ज्यादा है। आज हम 2004 से देख रहे हैं तो ओलंपिक मेडल्स में हमने बहुत ही
0: लगातार
1: मेडल्स है, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स में, हम वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमने बहुत ही प्रोग्रेस किया हुआ है। तो आई गेस शूटिंग इज नंबर 1 स्पोर्ट राइट नाउ इन इंडिया, और हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि जो एथलीट्स बहुत जिन्होंने वर्ल्ड में बहुत अच्छा किया हुआ है, उन्होंने अपने अपने एकेडमीज ओपन किए और उतना गाइडेंस बढ़ गया है, एक्सपोजर बढ़ गया है। सो आई गेस शूटिंग इज वन ऑफ द नंबर 1 स्पोर्ट इन इंडिया।
0: आपके स्कूल में एक छोटी सी शूटिंग रेंज शुरू होती है और आप जुड़ जाती हैं। गुजरात में एक ग्रासरूट प्रोग्राम होता है और आपको कुछ ऐसे एथलीट मिलते हैं जो

0: आगे चल के नाम कमाते हैं। ये जो ग्रास रूट प्रोग्राम्स होते हैं कितना मायने रखते हैं और आज देश के कोने कोने में शूटिंग की संभावनाएं खोजने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं?
1: सो बहुत काफी स्कूल्स में ये टैलेंट सर्च प्रोग्राम्स हो रहे हैं। एटलीस्ट मैं एक एकेडमी के पर्सपेक्टिव से बोल सकती हूँ कि काफी हमारे 20 एकेडमीज है, आज 20 ब्रांचेस है पूरे कंट्री में जहां पे हमारे ग्रास रूट लेवल प्रोग्राम्स बनते हैं। और वहां पे हमारी टीम जो है वो सर्च करती है, अलग अलग साइंटिफिक मेथड्स यूज करती है टू सी कि शूटिंग स्पोर्ट के लिए कौन सा स्टूडेंट, एक कोई रॉ स्टूडेंट है
0: उसमें संभावना
1: है कि जो टैलेंटेड है। और कुछ हमने काफी साइंटिफिक मेथड्स फिगर आउट किए हैं जो एक शूटिंग एथलीट, मतलब जो शूटर है वो बनने के लिए चाहिए कुछ स्किल्स है, तो वो स्किल्स हम ढूंढते हैं काफी स्कूल्स में। भुवनेश्वर है, पुणे है, आज गुजरात का बहुत बड़ा प्रोग्राम है, जबलपुर है, चेन्नई है, ये काफी सारे जगहों पे हमने ये टैलेंट सर्च किए हुए हैं। और आज बहुत जगह पे जो खेलो इंडिया का जो प्रोग्राम है जो मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया है, सो दैट इज ऑल्सो एक ग्रास रूट लेवल प्रोग्राम ही है जहां से कहां से बच्चे आते हैं और अपना सेंटर्स में हमारे वो ट्रेनिंग करते हैं और वो एज अ एथलीट डेवलप होते हैं।
0: अच्छा, जब आप शूटिंग नहीं कर रही होती हैं, फुर्सत के पल होते हैं, तो वो क्या करते हुए बीतते हैं?
1: कोचिंग नहीं करती हूँ क्योंकि पूरा दिन हम कोचिंग करते हैं। जब नहीं करती हूँ तभी भी नेक्स्ट डे के बारे में सोचती हूँ तो काफी प्रॉब्लम सॉल्विंग ब्रेन चलता रहता है कि ओके ये आज ये नेक्स्ट डे ये एथलीट करना है। लेकिन मैं आई लाइक रीडिंग बहुत अच्छा, मुझे ट्रैवलिंग अच्छा लगता है, तो आई गेस ये बहुत सारी 2-3 चीज है जो मैं कोशिश करती हूँ कि करूँ।
0: एक कोच के तौर पर ये जो उतार चढ़ाव है खिलाड़ियों के जीवन के, उनकी प्रोग्रेस के, कई बार नाकामी होती है, कई बार बड़ी कामयाबियां होती हैं, कई बार एक कामयाबी के बाद दूसरी कामयाबी के बीच की डिस्टेंस बहुत लंबी होती है, खुद को और खिलाड़ियों को संभालना कितना मुश्किल होता है?
1: ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि एथलीट्स इतनी मेहनत करते हैं और आप सारे एथलीट्स हर बार आप मेडल नहीं जीत सकते हैं या हर बार आप वही सेम ऊंचाइयां नहीं आप देख सकते हैं। तो हमारी बहुत अच्छी टीम होती है, बहुत लोग जुड़े होते हैं एक एथलीट के, कोच तो एक बोलते हैं कैप्टन है लेकिन वो शिप को बनाने में बहुत सारे लोगों का इम्पोर्टेंस है। तो हम ये टीम आई गेस एक अच्छा एनवायरमेंट एथलीट को देते हैं और हम संभाल लेते हैं। मुझे ऐसे लगता है इतना डिफिकल्ट नहीं है लेकिन हम संभाल लेते हैं उस एथलीट को, उसकी जो जो जरूरत है वो टाइम पे वो उसको देखना, उसको समझना एंड फिर उसको वो काइंड ऑफ सपोर्ट देना। अगर आप वो कर सकते हैं तो वो अब मुश्किल नहीं है इतना।
0: आपके सिखाए हुए बच्चों को अर्जुन अवार्ड मिला है, कितना गर्व होता है?
1: बहुत ही, इट्स प्राइड, रिकग्निशन इम्पोर्टेंट है उनके काम के लिए, इन स्पोर्ट्स काफी जरूरी होता है क्योंकि मेडल्स तो है ही लेकिन अवार्ड्स ये पार्ट ऑफ योर जर्नी है एंड लेकिन एक नेशनल अवार्ड मिलना एथलीट को और वो भी सबके सामने रिकग्नाइज होना पूरे, बिकॉज आप वो मिलियंस ऑफ पीपल आर वॉचिंग यू, तो मुझे लग रहा है कि इट्स अ प्राइड।
0: अच्छा, एक और बड़ा मकाम आपकी अपनी जर्नी में आया है जब अभी आपको द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है, अभी अवार्ड मिलना बाकी है। ये खबर जब आपको मिली तो क्या फीलिंग थी, क्या कैफियत थी?
1: फीलिंग तो मैं अभी भी सोच रही हूँ कि जितना काम हम करते हैं और इतने साल से जो काम किया है एंड उसका जब एक रिकग्निशन आपके एथलीट्स बनाने का आपको मिल रहा है, आई गेस एक अच्छा फीलिंग है, बहुत ही हम्बल फीलिंग है और ऑनर फील होता है कि आपको रिकग्नाइज किया गया है, सो आई गेस इट्स एन गुड फीलिंग।
0: अच्छा, मुझे ये बताइए कि बहुत बड़ी कॉम्पिटिशन्स के अवार्ड अब और कितनी दूर हैं, आने वाले सालों में किन किन मुकाबलों में अवार्ड्स की उम्मीद है?
1: सो अभी एशियन गेम्स है, सितंबर से एशियन गेम्स है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट है जो 4 साल में एक बार आता है एंड इट इज मच लुक्ड आफ्टर क्योंकि बहुत सारे स्पोर्ट्स है और एशिया के टॉप एशिया की जो कंट्रीज है और उसके टॉप एथलीट्स है वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो बहुत ही प्रेस्टिजियस इवेंट है एशियन गेम्स। उसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप है जो 2020

0: में लॉस एंजलिस में ओलंपिक्स है, उसका जो कोटा इवेंट होता है वहां से शुरुआत होगी।
1: बिल्कुल,
0: सो काफी दो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं।
1: बिल्कुल, बहुत सारी शुभकामनाएं और विविध भारती के स्टूडियो में आ पाई और अपनी पूरी जर्नी के बारे में आपने बताया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चलने से पहले अपनी पसंद का एक गाना जरूर बताइए जो हम अपने श्रोताओं को डेडिकेट करेंगे।
0: वैसे तो बहुत गाने, लेकिन एक बहुत ही फेवरेट सॉन्ग जो है वो है जब कोई बात बिगड़ जाए।
1: क्या बात है, जुर्म फिल्म का ये गाना सुनते हैं। आप स्टूडियो में आई, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू सो मच। थैंक यू।
1: शुक्रिया।

0: मैटिनी शो में अभी आप सुन रहे थे द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित शूटिंग कोच नेहा चौहान से यूनुस खान की ये बातचीत। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग रीमा जोशी का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्री,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में सुनिए कार्यक्रम यादों की महफिल।

लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। यादों की महफिल कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत करती हूं। मैं पूजा नारायणिया। जागते रहो फिल्म से मुकेश की आवाज में पहला गीत सलील चौधरी का संगीतबद्ध किया। आज है सलील चौधरी की पुण्यतिथि, हम उन्हें याद कर रहे हैं।

0: सच है क्या।
1: श्रोताओं, आज है संगीतकार सलिल चौधरी की पुण्यतिथि। उन्हें याद करते हुए आज यादों की महफिल कार्यक्रम में हमने उनके संगीतबद्ध किए कुछ गीत शामिल किए हैं। अगला गीत मधुमति फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। शैलेंद्र के बोल, धुन बनाई है सलिल चौधरी ने।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को वो भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर, हर रविवार शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।
2: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
3: नसीब इंसान का,
2: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, और कार्यक्रम में अब वक्त है एक अंतराल का।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विविध भारती से इस वक्त कार्यक्रम यादों की महफिल, और आज है संगीतकार सलिल चौधरी की पुण्यतिथि और हम उन्हें याद कर रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल में। अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म आनंद से मन्नाडी की आवाज में, योगेश का लिखा गीत, धुन बनाई है सलिल चौधरी ने।

बस इतना सा ख्वाब है। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और शान की आवाजों में। गोल्डी पहल और श्यामराज का लिखा गीत था और आदेश श्रीवास्तव का संगीतबद्ध किया। ये गीत अभी आप सुन रहे थे। संगीतकार आदेश श्रीवास्तव की आज पुण्यतिथि है, हम उन्हें याद करते हुए आपको उन्हीं के संगीतबद्ध किए कुछ गीत सुनवा रहे हैं। कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में उलझन फिल्म का गीत, मदन पाल ने इसे लिखा है, आदेश श्रीवास्तव ने संगीतबद्ध किया।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियाँ आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: हम इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्टकार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
3: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
4: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
3: सखी सहेली?
4: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
3: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
4: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
5: सखी सहेली।
6: आप सुन रहे हैं विविध भारती पर इस वक्त कार्यक्रम यादों की महफिल। अब आपको सुनवा रहे हैं आदि श्रीवास्तव का ही संगीतबद्ध किया गीत। निदा फाजली ने इस गीत को लिखा है, जगजीत सिंह और अलका याग्निक ने गाया है। फिल्म का नाम तरकीब।

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
3: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है। वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं है।
2: कभी चॉकलेटी हीरो कभी खूंखार विलेन तो कभी परम दिव्य साईं।
3: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
2: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्युलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
4: अब आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म चलते चलते का ये गीत। अभिजीत और साथियों ने इसे गाया है, जावेद अख्तर ने लिखा है और धुन बनाई है आदि श्रीवास्तव ने।

0: अल्का याग्निक, सुनिधि चौहान, उदित नारायण, सुदेश भोसले की आवाजों में ये अगला गीत आप सुनेंगे कभी खुशी कभी गम फिल्म से, समीर के बोल आदेश श्रीवास्तव का संगीत।
1: शुरू हो जाओ। 1, 2, 3।

कैलाश खैर, महुआ कामत और श्रद्धा पंडित की आवाजों में देव फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं निदा फाजली के बोल, आदि श्रीवास्तव की बनाई धुन।

देव फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे और इसी गीत के साथ अब कार्यक्रम यादों की महफिल यहीं संपन्न होने जा रहा है। आज हमने आपको संगीतकार सलिल चौधरी की पुण्यतिथि पर उन्हीं के संगीतबद्ध किए गीत सुनाए, साथ ही संगीतकार आदि श्रीवास्तव की पुण्यतिथि पर भी हमने उनके संगीतबद्ध गीत आज यादों की महफिल कार्यक्रम में शामिल किए थे। ये सफर आपने तय किया पूजा नारायणिया के साथ।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हम बस थोड़ी ही देर में होंगे हाजिर।

लीजिए श्रोताओं, कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हम हो गए हैं हाजिर। आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम सुरीला सफर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं पूजा नरानिया। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथ ही आज शिक्षक दिवस की आप सभी को शुभकामनाओं के साथ सभी शिक्षकों को गुरुओं को नमन करते हुए करते हैं कार्यक्रम का आगाज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर रोज हम एक इबारत या टेक्स्ट फेसबुक पर पोस्ट करते हैं। इसमें वो शब्द समाये होते हैं जिन पर आधारित गाने इस कार्यक्रम में शामिल किए जा सकते हैं। तो आज की इबारत या टेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, आज कल या परसों मिलोगी, मुकद्दर आजमाना चाहते हो क्या? शायद, क्योंकि देश में, गांव में, गली में, घर में ढूंढते ढूंढते बात अब घर से मेरे दिल में आकर ठहर गई है। हुस्न ने चाल ऐसी चली है कमाल कि क्या मिल गया क्या खो गया कुछ समझ ही नहीं आया। तो फिर इस कहानी का सच क्या है? आधी सच्ची आधी झूठी लगे तेरी कहानी, मगर दिल को मिले सहारे हैं तो झूठ भी सुनने को जी चाहता है। होठों की बंसी बना ले मुझे, शायद इन खामोशियों में भी कोई धुन तेरे दिल तक पहुंच जाए। फिर तो दिल में बंद कर लूं और दरिया में फेंक दूं चाबी। रामा दुहाई, अपनी सूरत पहचान न पाई, तुमसे मिली तो लगा आईना सामने था, बस उसमें चेहरा मेरा था और कहानी तुम्हारी। कहानी खत्म हो सकती है, मगर जिस दिल में तुम उतर गई हो वहां से तुम्हें निकालने की कोई चाबी बनी ही नहीं। जी हाँ, ये था इश्क और हुस्न के बीच एक वार्तालाप। तो ये इबारत आपने सुन ली है, आपने पढ़ भी ली है, तो अब आपको बूझना है आज की पंक्तियाँ या शब्द जिनमें जो इबारत में छुपे हुए हैं और उन्हीं से संबंधित गाने आज हम आपको सुनवाएंगे। और साथ ही लेंगे आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स। वैसे हमारे एक श्रोता ने इबारत पढ़ के कमेंट किया है कि वह आज की इबारत शब्द और जज्बात का ऐसा हसीन मेल है कि पढ़ते ही संगीत की धुन कानों में गूंज उठती है। सुरीला सफर का सफर सच में बेहद यादगार होने वाला है, ऐसा वो कह रहे हैं। आज ये बेहतरीन गीत या गाने बज सकते हैं। उन्होंने हमें कई सारे गीत भी यहाँ पर लिखकर भेजे हैं फिल्मों के नाम के साथ, साथ ही उन्होंने पंक्तियां भी हमें बूझकर बता दी है। क्या बात है। तो लेते हैं सबसे पहला गीत इस सफर का, और आपको बताना है कि ये जो गीत हमने लिया है फिल्म का नाम क्या है और अभिनेता अभिनेत्री कौन हैं।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने ये गीत सुना। इस गीत को संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि ये किस फिल्म का गीत है और साथ ही अभिनेता और अभिनेत्री कौन है। तो पहले लेते हैं आपके कमेंट्स। आज के गीतों की लिस्ट में सारे गीत जाने पहचाने हैं और सदाबहार तो हैं ही, ऐसा हमारी एक श्रोता लिख रही हैं। गीतों का संसार बहुत बड़ा और अनोखा है। कभी कुछ गीत ऐसे होते हैं जो सारा दिन हमारे साथ चलते हैं और रात को नींद की थपकियां देकर हमें सुला भी देते हैं। गीत क्या है, जब दुख हो तो हमें थाम ले और सुख में आनंद की बारिश कर दे। जीवन में बहुत सी बातें समझ के परे होती हैं, यह गीत भी ऐसे ही होते हैं। सुख दुख के साथ ही जीवन के लिए सबसे आवश्यक संजीवनी बूटी यह गीत ही तो है। क्या बात है, बहुत ही प्यारी बातें आपने हमसे साझा की है। गीत संगीत ना हो जीवन में तो कैसा जीवन। एक और श्रोता हमसे कह रहे हैं कि आज की इबारत की सबसे खूबसूरत बात है कि इसमें प्रेम कोई दावा नहीं बल्कि एक धीमे धीमे भीतर उतरता हुआ एहसास है। यह प्रेम की उस दास्तां सी है जहां दो लोग शायद मिले कम हैं मगर एक दूसरे में ठहर बहुत गए हैं। संवादों के बीच छुपी शरारत, इंतजार और अनकही चाहत धीरे धीरे एक ऐसे रिश्ते का रूप लेती है जिसका कोई नाम नहीं। यहाँ सच और झूठ भी मोहब्बत के सामने अपना अर्थ खो देते हैं क्योंकि दिल जिसे सच मान ले उसके लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं होती। बस यह एहसास ही बचता है कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में कहानी बनकर नहीं एक खुशबू की तरह आते हैं, दिखाई नहीं देते मगर उनके भीतर, उनके गुजर जाने के बाद भी देर तक हमारे भीतर महकते रहते हैं। जी हाँ, एक श्रोता हमें लिख रहे हैं कि आनंद ही आनंद रहे, वो हमारा ये प्रोग्राम सुन रहे हैं और साथ ही हमें इस तरह से कमेंट भी कर रहे हैं। कुछ श्रोताओं ने साथ ही गीत और फिल्मों के नाम भी लिख भेजे हैं जो उन्हें लगता है कि आज की इबारत के अनुसार बजने वाले हैं कार्यक्रम सुरीला सफर में। एक श्रोता लिखती है कि प्रेम यदि सच में प्रेम है तो वह हथेली की रेखा नहीं जिसे मुट्ठी में कैद कर लिया जाए, वह तो अनंत आकाश है जहां पक्षी को उड़ने की स्वतंत्रता भी है और लौट आने के लिए एक अपना घोंसला भी।

क्या बात है, आप सभी ने जवाब भी लिख भेजे हैं। फिल्म का नाम है आप बीती और अभिनेता और अभिनेत्री जो अभी हमने आपको गीत सुनवाया था उसमें थे हेमा मालिनी और शशि कपूर। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब आप सभी ने हमें लिख भेजे हैं। और अब अगला गीत आपको हम सुनवाने जा रहे हैं। आपको बताना है कि इस फिल्म में सखियों के साथ जो अभिनेत्री गुनगुना रही हैं, वो कौन है, और साथ ही इसमें एक पक्षी भी दिखाई देता है इस गीत में, तो उसका भी नाम लिख भेजिए हमें।

0: अपने हुए पराए इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और साथियों के स्वरों में अभी हमने आपको सुनवाया। शैलेंद्र के बोल थे, शंकर जयकिशन का संगीत, और जो प्रश्न हमने आपसे पूछे हैं उनके जवाब आपने लिख भेजे हैं। कुछ ही देर में हम आपके कमेंट्स लेते हैं, उससे पहले लेते हैं ये संदेश।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर।

0: संगीतकार उत्तम सिंह।
1: मुझको हुई ना खबर
0: एक उत्तम जीवन।
2: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
0: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती।
6: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
0: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक।
6: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
0: जी।
6: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
0: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
6: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
0: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
7: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
8: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं है।
7: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
8: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
7: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर। हमारी एक श्रोता कह रही हैं कि धन्य हो, सब गीतों की पंक्तियां पहली लाइन में ही दी हैं और पूछती हैं कि कौन से गीत बजेंगे। चलो जो भी बजेंगे वो हम सुनेंगे, क्या बात है, जरूर सुनिए। और अच्छा ये बताइए कि जो गीत अभी हमने इन संदेशों से पहले बजाया था, क्या वो आपने बूझ लिया था आसानी से? हमारे अगले श्रोता कह रहे हैं कि आज गद्यांश में इश्क मोहब्बत की खास कहानी उकेरी हुई है। इश्क कोई ऐसा लफ्ज नहीं जिसे सिर्फ किताबों में पढ़ा जाए, नहीं यह कोई ऐसा फलसफा है जिसे चंद जुमलों में समेटा जा सके। यह तो दो रूहों के बीच बहने वाली वह मध्यम सी नदी है जो खामोशी से बहती है लेकिन पूरे वजूद को सराबोर कर देती है। प्रेम कहानी कभी खत्म नहीं होती क्योंकि जिस्म फना हो सकते हैं लेकिन दो दिलों के बीच धड़का हुआ सच्चा एहसास कायनात के जर्रे जर्रे में हमेशा के लिए अमर रहता है। न आंखों से बयां हुई न लफ्जों में समा सकी यह इश्क, यह कहानी इश्क है बस धड़कनों से गाई जा सकी। क्या बात है, क्या फरमाया है आपने। एक श्रोता कहते हैं कि सुमधुर सुरीले गीतों और श्रोताओं के दिलचस्प संदेशों से सजी विविध भारती के सबसे लोकप्रिय सुपरहिट सुरीला सफर में सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। बिल्कुल हमारे कुछ श्रोताओं ने हमें इबारत पढ़कर प्यार मोहब्बत की कहानी मधुर गीत गा रही है, दो दिलों के बीच की निशानी खामोश एहसास की जुबानी जवानी दीवानी की मस्तानी खुशबू आ रही है, इस तरह से उन्होंने कुछ गीत हमें सुझाए हैं।

एक श्रोता लिख रहे हैं कि विविध भारती के सुरीले सफर में आज फिर इबारत में छिपे गीतों के मुखड़े और अंतरे से गीतों की गाड़ी आगे बढ़ेगी, जिसमें एक से बढ़कर एक गीतों की आमद दिखती है। मुकद्दर आजमाना चाहता हूँ, दरिया में फेंक दू चाबी, इस तरह से उन्होंने हमें गीत भी लिख कर भेजे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि भिन्न भिन्न गानों के ताने बाने में बुनी गई इश्किया इबारत दिल फेंक आशिक माशुकाओं के दिलों को छेड़ती हुई रोमानी प्रेम गाथा से सराबोर है। हुस्नो इश्क के इस टकराव में तहजीबी अदाएं हैं, छेड़खानी है, इकरार है तकरार, इनकार फिर अंत में स्वीकार भी है। मजबूर है दिलों के जज्बातों को बखूबी गीतों का संकलन कर खूबसूरत रूप से सजाया गया है। दो दिलों के दरमियां बंद हुए अल्फाजों की चाबी ढूंढने के लिए संगीतमय दरिया में डूबने के लिए हम श्रोतागण भी सफर के इंतजार में बेताब हैं। क्या बात है, आप सुनते रहिए सुरीला सफर। हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि प्रेम जब शाश्वत अनुभूति के अस्तित्व को प्राप्त कर रहा होता है तो यहां से प्रेम कहानी स्मृति काव्य के रूप में परिणत होने लगती है और यह कहानी कभी खत्म नहीं होती। जीवन समाप्त हो सकता है लेकिन इस कहानी में जो शब्द गढ़े गए हैं वो किसी सीमा के बंधन से नहीं जुड़े होते, उनका विस्तार ब्रह्मांड में तरंगित हो जाता है। उससे प्रेम की रागिनी बांसुरी से निकलने वाली मधुर तान से जुड़कर कहानी को संगीतमय बना दिया करती है। इसी तरह से हमारे कई श्रोताओं ने हमें कई सारे गीत आज यहाँ लिखकर भेजे हैं। साथ ही एक श्रोता कहते हैं कि प्रेम शायद वही है जब किसी की तलाश गलियों से निकलकर दिल की दहरी पर आ बैठे, फिर मुलाकात हो या ना हो, कहानी सच हो या आधी अधूरी, फर्क कहाँ पड़ता है। कुछ लोग मिलते नहीं, बस भीतर कहीं ठहर जाते हैं, उनकी आवाज खामोशी में सुनाई देती है, उनकी याद अकेलेपन में साथ चलती है। मोहब्बत का हिसाब बड़ा अजीब है।

हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि अभी तक दिल ओ दिमाग तर बतर हैं आपने यादों की महफिल प्रोग्राम में सलिल चौधरी की जो गीत सुनवाए उसके खुमार में। आज की इबारत भी सुंदर गानों की तरफ इशारा कर रही है। प्रेम वो खुशबू है जो बिना चाहे भी फैल जाती है, बिना बताए सबको पता चल जाता है। किसी को दिल में बंद करके चाहे चाबी को दरिया में फेंक दो पर बंद ताला तो सबको नजर आ ही जाता है। बिना कहे कितनी कहानियां बन जाती हैं और वो अमर भी हो जाती हैं। इस गीत से पहले हमने जो गीत आपको सुनवाया था अपने हुए पराए फिल्म से, और हमने पूछा था कि इस गीत में कौन अभिनेत्री हैं जो गुनगुना रही हैं और साथ ही कौन सा पक्षी है। तो इसका जवाब आया है कि माला सिन्हा इस गीत में गुनगुना रही हैं सखियों के साथ, और साथ ही जो पक्षी है वो है मोर जो भी साथ में नाच रहा है। बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने हमसे साझा किए हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि इस दिल में भी कोई बसता था मगर ना खता उनसे हुई ना हमसे हुई, फिर भी यह दिल टूट गया जिनकी वजह से हमने अपना पूरा

करियर खत्म कर दिया और आज एक गुमनाम जिंदगी जी रहे हैं। अगर इस टूटे दिल को जोड़ने वाला कोई गम भरा गीत हो तो सुनवा दीजिए। देखिए, गीत तो हम आपको सुनवा ही रहे हैं, कोई बात नहीं, आप गीत सुनिए और जिंदगी का आनंद लीजिए। एक श्रोता ने लिखा है कि आप बीती का मतलब, एक्चुअली हमने जो गीत सुनवाया था फिल्म का नाम था आप बीती, तो उन्होंने इसी शब्द को उठाकर हमें बताना चाहा है कि स्वयं पर बीती हुई कुछ बातें, और ऐसा तकरीबन सबके साथ हुआ होगा, कुछ अच्छी कुछ आलतू फालतू बातें जरूर हुई होगी। इसे कह रहे हैं वो आप बीती, बिल्कुल।

साथ ही एक श्रोता ने हमें जवाब लिख भेजा है, जो गीत अभी हमने आपको सुनवाया था फिल्म ससुराल से, क्या मिल गया क्या खो गया। हमने पूछा था कि कौन अभिनेत्री है इस गीत में, तो हमारी श्रोता ने लिखा है कि फिल्म ससुराल का ये गीत है और बी सरोजा देवी अभिनेत्री, साथ ही राजेंद्र कुमार अभिनेता हैं। बिल्कुल सही जवाब आपने लिख भेजा है, इसके लिए बहुत धन्यवाद। एक श्रोता लिख रहे हैं कि पुराना रेडियो खो गया है और नया फेसबुक पेज मिल गया है, क्या मिल गया और क्या खो गया, क्या बात है। और साथ ही एक श्रोता लिख रही है कि बहुत ही मस्त धुन बीच बीच में सुनवाई जा रही है, जी आप बस इस सफर का आनंद लेते जाइए। क्या बात है, आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब हमें लिख भेजे हैं हमारे प्रश्नों के। एक श्रोता ने लिखा है कि सच कह रहा हूं, मैंने तो अपनी धर्म पत्नी को दिल में उस दिन ही बंद कर दिया और चाबी दरिया में फेंक दी है, जब मैंने पहली बार उन्हें देखा था और पहली मुलाकात हुई थी, मेरी अंतिम सांसों तक मेरे दिल में बंद रहेगी। क्या बात है, बहुत ही सुंदर आपने बात कही है। अगर आपकी धर्मपत्नी ये बात सुन रही है तो आज उनसे ज्यादा खुशनसीब कौन होगा, है ना। हमारे एक श्रोता ने ये जो धुन हमने बजाई है उसके बारे में लिखा है कि माना जनाब ने पुकारा नहीं पेइंग गेस्ट फिल्म की ये धुन, और माउथ ऑर्गन से ये सुन रहे हैं आप, और मिलन गुप्ता उन्होंने ये हमें लिखकर भेजी है इसकी डिटेल्स। और एक श्रोता कह रहे हैं कि अपने हुए पराए अभिनेत्री माला सिन्हा और सखियों के साथ में खूबसूरत बगीचे में काफी हंसमुख तरीके से नृत्य कर रही हैं। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है, बहार बनके वो मुस्कुराए, सही में सदाबहार बेहतरीन सुंदर गीत बज रहे हैं, इसके लिए वो हमें धन्यवाद भी कह रहे हैं, और आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में बने हुए हैं इसके लिए भी हम आपको बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। और अब जो गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं उस फिल्म का नाम बता दीजिए,

बिल्कुल, देश से गांव में, गांव से गली में और गली से घर में, और घर की बात सीधे दिल में। एक श्रोता लिख रहे हैं कि जरा जल्दी जल्दी मिला करो ना जी, लता दीदी के गाए सदाबहार सुरीले गीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो आभार व्यक्त कर रहे हैं और हम भी आपका आभार व्यक्त करते हैं, आपको देते हैं धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। एक श्रोता ने लिखा है कि यह गीत काफी समय बाद सुनने को मिल रहा है। एक श्रोता ने लिखा है कि हमें खुशी है कि आज सुरीला सफर प्रोग्राम की गीतों भरी इबारत में मनमोहक गीतों की बौछारें बरसने वाली है, हम सभी श्रोता भी इन गीतों में झूमेंगे दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक। क्या बात है। एक श्रोता लिख रही है कि कभी किसी को ढूंढते ढूंढते हम शहर, गांव और गलियों से गुजरते हैं और पता चलता है कि जिसे तलाश रहे थे वो तो चुपचाप हमारे दिल में आकर बस चुका है। फिर कहानी सच्ची हो या आधी अधूरी, दिल को उसका साथ मिल जाए तो हर बात खूबसूरत लगने लगती है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। एक श्रोता ने लिखा है कि आदेश श्रीवास्तव जी की पुण्यतिथि पर यादों की महफिल प्रोग्राम उन्हीं पर केंद्रित था, वो विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। साथ ही एक श्रोता लिख रहे हैं कि सभी को यथायोग्य सादर सप्रेम और इस तरह का अभिनंदन वो कर रहे हैं। साथ ही वो सारे कार्यक्रमों से उन्होंने पिरोकर हमें ये संदेश लिख भेजा है सुरीला सफर तक, वो अब भी हमारे साथ बने हुए हैं विविध भारती पर। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि अपने होठों की बंसी बना ले मुझे, आरजू तो हमारी भी है ये, मगर डर है कि मौसम कहीं ये बदल न जाए। जी हाँ, हमें इस डर से उभरते हुए जीवन पथ पर अग्रसर होना ही पड़ेगा, तभी प्रणय के पथ का सृजन होगा और भय बिनु होए न प्रीति के रीति का मिलन होगा। इस कहानी के सच को समझने के लिए ही हो रहा है, जो उसे समझने और उसी में रहने के धैर्य और संयम के साथ ही साथ उपजे साहस के साथ सत्य की दिशा के पहचान की आवश्यकता है।

Ezt szabulik rá. और साथ ही वो लिख रहे हैं कि आज अपने सुरीला सफर कार्यक्रम में फिर से शामिल होने वाले गद्य पद्यमयी इबारत में विभिन्न फिल्मों के प्रणय पर गीतों की पंक्तियां अंतरे मुखड़े के रूप में रखी गई हैं और उनमें प्रणय के प्रमुख भाव समाये हुए हैं। परदेसी आया गांव में गली में घर में हाँ घर से दिल में जी हाँ वे लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जिनके हृदय में कोई ऐसा परदेसी इस तरह आकर समाया हुआ है। बहुतेरे तो उस पर भी शक ही नहीं अपितु सच में ऐसा हो सकता है। ऐसे उहापोह भरे माहौल में ही जीवन गुजार देते हैं और अपने हृदय में ही अवस्थित उस परदेसी से दूरी बनाए रखते हुए गांव गली घर के परदेसी तलाश में ही लगे रहते हैं।

और हमने आपसे पूछा था कि ये जो गीत हमने आपको सुनवाया, इस फिल्म का नाम क्या था। आप सभी के जवाब हमें मिल गए हैं, फिल्म का नाम प्रतिज्ञा। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। और अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है दूर की आवाज। मोहम्मद रफी का गाया गीत है। शकील बदायूनी ने इस गीत को रचा है और संगीतबद्ध किया है रवि ने। फिल्म का नाम हमने आपको बता दिया है, अभिनेता और अभिनेत्री का नाम आप हमें बताएं।

से लोकप्रिय गानों से बनाई गई है। आईना चेहरा तो दिखाता है मगर मोहब्बत इंसान को उसकी असली कहानी दिखाती है। जब कोई दिल में उतर जाता है तब उसे भुलाने की कोई चाबी नहीं होती। कहानी चाहे खत्म हो जाए पर एहसास अपनी जगह बना रहता है। तो उन्होंने कई गीत भी हमें यहाँ पर सुझाए हैं। बहुत बढ़िया। ऐसे हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि दुकान पर मोबाइल रिपेयरिंग के काम की व्यस्तता की वजह से जवाब लिखने का समय नहीं मिल पाता। हमेशा की तरह बहुत सुंदर कार्यक्रम, ऐसा वो कह रहे हैं। कोई बात नहीं, आप अपना काम करते रहिए और साथ ही सुनते रहिए विविध भारती के सभी कार्यक्रम। अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। फकीरा फिल्म का गीत है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। लता मंगेशकर की आवाज और मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत, रविंद्र जैन गीतकार और संगीतकार।

हमारे एक श्रोता लिख रही हैं कि आज की इबारत के सभी गाने बहुत अच्छे हैं और उनका पसंद का गीत भी उन्होंने साथ में लिख भेजा है। अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं ब्लफ मास्टर फिल्म से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में, राजेंद्र कृष्ण की बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

हमारे एक श्रोता हैं जो फिलिपिन मनीला से हमें मैसेज कर रहे हैं। जय हिंद, उन्होंने ये मैसेज किया है और वो सुरीला सफर सुन रहे हैं। बहुत सारे श्रोताओं ने शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के संदेश भी हमें भेजे हैं। और एक श्रोता ने ये भी लिखा है कि देश से गांव में, गांव से गली में, गली से घर में और फिर दिल में विविध भारती आ गया है। क्या बात है। लीजिए अब सुनिए गैम्बलर फिल्म का ये गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में।

अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं और इसी गीत के साथ सुरीला सफर अब समाप्त होने की ओर है। आसपास फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में। और इसी गीत के साथ दीजिए आज्ञा पूजा नारायणिया को। आप सभी के संदेशों के लिए आप सभी को हम धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।

आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया, ओए आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया।

0: वो गुजरिया होय होय होय ओ जाने सारी नगरिया
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया।

0: हो चल पीछा छोड़ हो गोरी हो नटखट हो खटपट हो पनघट हो झटपट
1: पहले तो बांधी निगाहों की डोर अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़
2: तोरे नैना हम मीठे बहना और तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना हाय हाय मुझको बना गए बावरिया आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया हाय हाय वो तेरी तिरछी नजरिया
1: ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया होय होय ओ जाने सारी नगरिया
2: हाँ कैसी भी लगी दिल पे जैसे कतरिया ओ सवरिया
1: ओ गुजरिया
2: ओ

बैठे हैं देखो यहाँ शेर बड़े भारी, देश भगत छोड़े काले बाजारी। बैठे हैं देखो यहाँ शेर बड़े भारी, देश भगत छोड़े काले बाजारी। लेके समाज का ये डंडा बेचे झंडा खाए।

इसमें सवार कोई कार का भिखारी, ख्वाबों की दुल्हन साथ बिचारी, ओ बाबू प्यार के फरियादी, कर ले शादी है आजादी।

चलती है गाड़ी तू भी झूम ले ऐ दिल, आने वाली है इंसाफ की मंजिल। चलती है गाड़ी तू भी झूम ले ऐ दिल, आने वाली है इंसाफ की मंजिल। कहे जुगल गाओ प्यारो गम के मारो बेसहारा।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं है।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: cena.
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली हुई कलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताते हैं
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: नाट्य तरंग आज इस कार्यक्रम में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के बांग्ला उपन्यास चोखेर बाली का रेडियो नाट्य रूपांतरण आप सुनेंगे, आंख की किरकिरी। रूपांतरकार एवं निर्देशक नंदलाल शर्मा। प्रस्तुत है आंख की किरकिरी इस नाटक का पहला भाग।
1: मैं हूं महेंद्र, बचपन से ही उच्चांकित रहा हूं। मैं अपनी इच्छा पर दूसरे का अंकुश सहन नहीं कर सकता। घर में मैं हूं, मेरी मां राजलक्ष्मी है और काकी अन्नपूर्णा। इसके अलावा मेरा बचपन का परम मित्र बिहारी।
2: हाँ, मैं महेंद्र का परम मित्र हूं। वैसे मेरा कोई नहीं है, महेंद्र की मां को ही अपनी मां समझता हूं और अन्नपूर्णा काकी को काकी। काकी साक्षात देवी है, मैं उनकी भक्ति करता हूं। शादी के लिए काकी की भांजी आशा को मैं देखने गया। लड़की सुंदर और सुशील थी। लड़की देखने महेंद्र भी मेरे साथ गया था। बात पक्की हो गई, लेकिन भाग्य की विडंबना देखिए
3: कि हमारी शादी महेंद्र के साथ हो गई। वैसे हमारे पति की शादी हमारी सास की सहेली की लड़की विनोदनी से होने वाली थी,
4: लेकिन मेरा ऐसा भाग्य कहाँ था। शादी से ही 4 दिन पहले उन्होंने इनकार कर दिया। फिर बिहारी से शादी की बात चली, लेकिन और फिर मजबूरी में मेरी शादी एक रोगी व्यक्ति से हो गई। और कुछ दिनों बाद वो चल बसे। एक बार महेंद्र की माँ अपनी मायके आई, वहीं उन्हें मैं मिल गई। उनके साथ बिहारी भी था। जब कलकत्ता लौटने लगी तो मुझे भी अपने घर

0: आई। घर का सारा काम मैं स्वयं करने लगी तो महेंद्र की पत्नी आशा अपने आप को मेरे सामने छोटा समझने लगी, मुझसे दूर दूर रहने लगी। लेकिन लेकिन थोड़े ही समय में हम सहेलियां बन गई। अब आशा, महेंद्र और मेरी सभा रोज ही जमने लगी। लेकिन घर के कामकाज में मैंने किसी प्रकार की शिथिलता नहीं आने दी। रसोई पानी, कामकाज, माँ की सेवा सब करने के बाद ही मैं आमोद प्रमोद में सम्मिलित होती थी। मुझे इतना काम करते देख महेंद्र कहता,
1: दास दासियों से काम न लेकर तुम उन्हें मिट्टी कर दोगी।
0: अरे काम न करके स्वयं मिट्टी होने से तो अच्छा ही है। जाओ, तुम कॉलेज जाओ।
1: लेकिन आज इस मौसम में?
0: नहीं नहीं, ये नहीं होगा। गाड़ी तैयार है, कॉलेज जाना ही पड़ेगा।
1: सच विनोद, तुमने आकर इस घर की काया ही पलट कर दी। घर का नक्शा ही बदल गया। कपड़े यथास्थान पर तैयार, हर जगह तुम्हारी सेवा का अनुभव करता हूँ। आशा को तो किसी काम का शऊर ही नहीं।
0: अरे हाँ, बिहारी बाबू बहुत दिनों से नहीं आए।
1: हाँ, मैं तो भूल ही गया था। बिहारी ने मुझे लिखकर सूचित किया था कि रविवार को माँ के हाथ का भोजन करेगा, लेकिन मैंने उत्तर लिख दिया कि रविवार को मुझे विशेष कार्य से बाहर जाना है।
0: तुमने ऐसा क्यों लिखा?
1: अरे उसके आने पर अपना रविवार मिट्टी हो जाता।
2: अरे महेंदा, शंभू से मालूम हुआ कि तुम बाहर नहीं गए, घर में ही हो।
1: हाँ, वो तबीयत ठीक नहीं, इसलिए बाहर नहीं जा सका। वो सर में बहुत दर्द है। बैठो बिहारी।
0: तुम बहुत देर से बैठे हो, लाओ सर में बाम लगा देती हूँ।
1: नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है।
0: अरे लेटो भी, मैं लगा देती हूँ। लेटो भी, लेटो।
1: अच्छा,
0: कुछ आराम मिल रहा है?
2: हाँ। अरे विनोद भाभी, ऐसी सेवा टहल होने पर तो रोग घटेगा नहीं, बढ़ जाएगा।
0: हम मूर्ख स्त्रियां इसे क्या जाने, आप लोगों के डॉक्टरी शास्त्र में कदाचित ऐसा ही लिखा होगा।
2: ठीक तो है। अरे ये सेवा देखकर तो मेरे सर में भी दर्द हो रहा है, किंतु मेरे जैसे अभागे कपाल को बिना चिकित्सा के ही चटपट ठीक हो जाना पड़ता है। महेंद्र भैया के सिर में जोर अधिक है।
0: मुझे क्या आवश्यकता है, मित्र ही मित्र की चिकित्सा करे।
2: ठीक है, मित्र की चिकित्सा मित्र ही करेगा। मैं ही सर दर्द लाया हूं, मैं ही इसे साथ ले जाऊंगा। औषधि द्वारा बीमारी दूर करने की अपेक्षा बीमारी होने न देना ही अच्छा है। अच्छा मैं चलता हूं। अब दूर रहने से काम नहीं चलेगा। जैसे भी हो, मुझे इनमें शामिल होना ही पड़ेगा। कई दिनों से पढ़ाई में व्यस्त रहने के कारण मैं इधर नहीं आ सका। मुझे क्या मालूम था कि इस बीच मामला यहां तक बढ़ गया है। नहीं नहीं, अब इनसे दूर रहने से काम नहीं चलेगा। अब इनसे दूर रहने से काम नहीं चलेगा।
0: मालूम होता है बिहारी बाबू को यह सब अच्छा नहीं लग रहा। जब मैं महेंद्र के सर पर बाम लगा रही थी, बिहारी बाबू की आंखों में मैंने देखा कि वे मानो ये अभिनय देखकर मुस्कुरा रही थी। मालूम होता है इस आदमी को धोखा देना कोई सरल काम नहीं। कुछ भी उसकी दृष्टि से छिपा नहीं रह सकता। ओह, मैं यहां क्यों आई?
2: विनोद भाभी, इस लड़के को इसकी माँ ने मिट्टी किया, अब स्त्री कर रही है। तुम वैसा ना करके एक नया रास्ता दिखाओ।
1: अर्थात
2: मेरे जैसे आदमी को जिसे कोई कभी पूछता नहीं,
1: उससे मिट्टी करो। हम मिट्टी होने की उम्मीदवारी इतनी सरल नहीं है बिहारी, सिर्फ दरख्वास्त देने से ही काम नहीं हो जाता।
0: मिट्टी होने की क्षमता भी तो होनी चाहिए बिहारी बाबू।
2: वो तो अपना गुण न होने पर भी दूसरे का हाथ लगने से आ जाती है।
0: बहन किरकिरी, भाई अपने इस तेवर का भार अब तुम ही ले लो। बहन, तुम्हारा ये भिक्षुक तेवर मेरी आड़ में तुम ही से मान की भिक्षा मांगी।

0: आया है, अरे कुछ दे दे।
1: हम जाते हैं।
2: वाह भाई वाह, मेरी बारी में बातें दूसरों पर टाल ली जाती हैं, किंतु महेंद्रा के साथ नकद कारोबार होता है।
3: बिहारी ये तू क्या पक रहा है?
2: ठीक है मैं चलता हूँ।
0: अरे रे रे रे, आप निराश हो करना चाहिए बिहारी बाबू, मैं अभी किरकिरी को भेज देती हूँ।
2: महेंद्रा तुम अपना सर्वनाश करना चाहते हो तो करो, किंतु जो सरल हृदय साध्वी तुम पर पूर्ण विश्वास रखती है उसका सर्वनाश ना करो। अब भी कहता हूं उसका सर्वनाश ना करना।
3: पहेली मत पूछाओ बिहारी, जो कुछ कहना है साफ साफ कहो।
2: साफ ही कहूंगा महेंद्रा, विनोदनी तुम्हें जान बूझ कर अधर्म की ओर ले जा रही है और तुम ना समझकर कुमार की ओर बढ़े जा रहे हो।
3: बिल्कुल झूठ। यदि तुम किसी भद्र महिला को ऐसी संदेह भरी दृष्टि से देखते हो तो अंतःपुर में तुम्हारा आना ही ठीक नहीं।
2: ठीक है मैं जाता हूं।

0: बेटी तू अपना भी ख्याल रखा कर। अरे जब से मैं बीमार हुई हूँ तो हर समय मेरी ही सेवा में लगी रहती है।
1: अरे क्या हुआ माँ, मुझे तुम्हारी सेवा करने में कितना आनंद मिलता है।
0: अरे वही तो तुझ में विशेषता है री, जब भी तुझ पर कोई काम आ पड़ता है तो तू उस काम को करने में इतनी तल्लीन हो जाती है कि किसी और ध्यान नहीं देती। काश तू मेरी बहू होती।
1: माँ आप ज्यादा न भूलें, आराम करें।
2: चुन्नी मैं तुमसे कई बार कह चुका हूँ कि मेरे नहाने से पहले मेरे कपड़े तैयार कर दिया करो, पर एक दिन भी तुमने ऐसा नहीं किया, इससे कितना समय बर्बाद होता है।
3: पर हमने तो नौकर से कह दिया था।
2: नौकर से कह दिया था, अपने हाथ से नहीं कर सकती थी। तुमसे तो किसी काम की आशा करना ही व्यर्थ है, तुम कुछ भी नहीं समझती कैसे क्या करना चाहिए। कमरे की हालत देखी है, हर चीज बेतरतीब है।
3: तुम हमें दासी की तरह रखो, दंड दो पर अपने चरणों की सेवा के योग्य बना लो।
2: चुन्नी चुन्नी मुझसे अपराध हुआ है, मुझे मुझे क्षमा कर दो चुन्नी।
3: नहीं ऐसा न कहो, तुमने कोई अपराध नहीं किया, सब दोष हमारा है।
2: चुन्नी मेरी हृदय मणि चुन्नी, मैं हृदय में सबसे ऊपर तुम्हें रखूंगा। अरे हाँ, कॉलेज में कल से हमारी नाइट ड्यूटी पड़ रही है, इसलिए वहां मैस में रहना पड़ेगा।
3: सुनो हमारी एक प्रार्थना है।
2: कहो।
3: तुम हमें रोज एक चिट्ठी भेजा करोगे?
2: और तुम भी?
3: चलो हटो, हमें क्या लिखना आता है।

माँ को प्रणाम करके मुझसे बगैर मिले ही चले गए। मैस में जाकर रहेंगे, दिखाना चाहते हैं कि मेरी परवाह नहीं करते। महेंद्र, आशा के प्रति तुम्हारा प्रेम मेरे प्रणय वंचित चित्त को हमेशा ही बता करता है। मुझ जैसी स्त्री रत्न की उपेक्षा करके तुमने आशा जैसी क्षीण बुद्धिहीन बालिका का वरण किया। महेंद्र, तुमने मेरे अंतर में एक आग सुलगा दी है। मैं तुम्हें दंड दूं या हृदय समर्पण कर दूं? ये आग हिंसा की है या प्रेम की? पर चाहे जिस कारण भी हो, चलने के लिए या चलाने के लिए मुझे महेंद्र की जरूरत है। हाँ, मुझे उनकी जरूरत है, मुझे उनकी जरूरत है। वो जाएंगे कहाँ?

0: उन्हें गए कितने दिन हो गए लेकिन उनकी चिट्ठी नहीं आई। क्या क्या अभी भी वो हमसे गुस्सा है? उन्हें क्या मालूम हम अपनी हर शाम उनकी चीजों को स्पर्श करके काटा करते हैं। हमने तो उनसे प्रार्थना भी की थी कि हर रोज हमें चिट्ठी भेजा करना।
1: क्यों यहाँ चुपचाप अकेले में क्यों उनकी याद से बातें हो रही हैं?
0: बहन देखो ना, हमसे कहकर गए थे कि हमें रोज चिट्ठी लिखा करेंगे पर उनकी कोई चिट्ठी नहीं आई। हमें डर लगता है कहीं वो हमसे गुस्सा।
1: अरे रे रोते नहीं, हो सकता है कि वो ये सोच रहे हो आशा ने चिट्ठी क्यों नहीं लिखी।
0: हमें लिखना नहीं आता बहन। हाँ हमारी तरफ से तुम चिट्ठी लिख दो ना।
1: अरे इसमें सोचना क्या है, जो दिल में आए वो लिख दो।
0: अब हम चलते हैं।
1: ये क्या बिहारी बाबू, क्या आप बीमार हैं?
2: नहीं तो।
1: तू दोनों आंखें सुर्ख क्यों हैं?
2: अरे हाँ विनोद भाभी, महेंद्र कहाँ गया है?
1: कॉलेज में विशेष काम है ऐसा कह के गए हैं।
2: विनोद भाभी तुम आशा की देखभाल करना। आशा इतनी सरला है कि किसी को चोट पहुंचाना नहीं जानती, यहां तक कि आघात से अपनी रक्षा करना भी नहीं जानती।
1: आप निश्चिंत रहें बिहारी बाबू, मेरी आंख की किरकिरी के लिए चिंता करके अपने आप को अधिक कष्ट न दें।
2: अच्छा मैं चलता हूं।
1: आशा के लिए बिहारी बाबू का हृदय कितना व्यथित है। महेंद्र ने आशा से विवाह किया, उस आशा से जिसके साथ बिहारी की बात पक्की हुई थी। वो ही बिहारी बाबू आशा की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। वो चाहते हैं कि विनोदिनी हमेशा आशा के आंसू पूछने के लिए तैयार रहे। ऐसा लगता है जैसे मैंने इसीलिए जन्म लिया है कि मैं आशा के रास्ते के कांटे चुनूं, आशा के सुख में जरा भी कमी ना आने दूं। लेकिन नहीं, मैं एक बार इस महेंद्र को, इस बिहारी को धूल में गिराना चाहती हूं। या तो आशा ही रहेगी या विनोदिनी।
3: इतने दिनों के बाद आशा की चिट्ठी आई है। आशा, मेरी आशा, जरा पढ़ूं तो आशा ने क्या लिखा है।
0: प्रियतम, जिसे भूलने के लिए चले गए हो,
1: इस पत्र में उसकी याद क्यों दिलाऊं? तुम्हारी अवहेलना उपेक्षा जो कांटे की तरह मेरी पसलियों में समा गई है, वो दिन रात सब कामकाज सब चिंताओं के बीच मुझे बेथती रहती है। नाथ, हाँ नाथ, तुमने जो मुझसे प्रेम किया वो क्या मेरा ही अपराध है? मैंने क्या स्वप्न में भी ऐसे सौभाग्य की आशा की थी? न जाने क्या देखकर तुमने मुझे इतना आदर दिया। लेकिन एक बात समझ न सकी कि घर में रहते हुए भी क्या तुम मुझे फेंक नहीं सकते थे? मेरे लिए भी क्या तुम्हें घर छोड़कर जाने की जरूरत थी? मैं क्या तुम्हें इस तरह पकड़े हुए हूं? मेरे लिए क्या कहीं जाने का रास्ता नहीं रह गया था? मैंने तो कई बार काम जाना चाहा लेकिन मुझे रोक लिया गया, वरना मैं तो बहकर आई हूं, बहकर चली जाती।
3: ये चिट्ठी, समझा आशा की आड़ लेकर

0: तीनों अपने लिए चिट्ठी भेजी है। तीनों उतनी समझती है कि मैं उसे भूलने के लिए घर छोड़कर आया हूं। उसकी स्पर्धा को झूठ सिद्ध करने के लिए मुझे तुरंत ही घर लौटना चाहिए और अब से मैं विनोदनी से दूरी रहूंगा। यहां लौटने से पहले मैंने सोचा था कि मैं विनोदनी से दूर रहूंगा, लेकिन ये स्वाभाविक स्थिति नहीं। सहज भाव से बातचीत करके इसे खत्म कर देना चाहिए।
1: बिहारी बाबू, न जाने महेंद्र बाबू को क्या हो गया है। मुझे अपनी किरकिरी के लिए बड़ी चिंता हो रही है। मैं तो सदा यहां रहूंगी नहीं, पर मेरे चले जाने के बाद तुम उसका ध्यान रखना, वो दुखी ना होने पाए।
2: भाभी, तुम्हें रहना ही पड़ेगा, तुम्हारा अपना कोई नहीं। तुम इस सरला बालिका की सुख दुख में रक्षा करने का भार अपने ऊपर ले लो।
1: लाला जी, मैं सदा यहां कैसे रहूंगी, लोग क्या कहेंगे।
2: लोग जो कहें कहने दो, तुम देवी हो। संसार के निष्ठुर आघात से बालिका की रक्षा करना तुम्हारी ही योग्य काम है। भाभी, पहले मैंने तुम्हें नहीं पहचाना था। मैंने भी संकीर्ण हृदय सामान्य लोगों की तरह तुम्हारे बारे में नीच धारणा बना ली थी कि तुम आशा के सुख से ईर्ष्या करती हो, किंतु बाद में तुम्हारे हृदय का परिचय मिला और तुम पर श्रद्धा हो गई। अच्छा, मैं चलता हूं।
3: सुनो, तुम तो काशी जाकर अपनी काकी से मिला और उनका हमारे लिए दिया उपहार सिंदूर की डिब्बी भी ले आए। सुनो, हमें भी एक बार मौसी की चरण धूली लेने जाने दो ना।
0: चुन्नी, तुम्हें तुम्हारी पुण्यवती मौसी का आशीर्वाद है। वे तुम्हारे ही मंगल के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर चली गई। तुम्हारा कभी कोई अकल्याण नहीं हो सकता।
3: मौसी, तुम्हारा आशीर्वाद सदा मेरे स्वामी के साथ रहे। सुनो, क्या तुम मेरी एक प्रार्थना पूरी करोगे। मुझे एक बार, सिर्फ एक बार उनसे मिलने जाने दो। वो मेरी ताई जी है ना, वो हाँ, वो मेरी ताई जी है ना, वो काशी जाने वाली है, उन्हीं के साथ मुझे भेज दो।
0: मैं अभी माँ से कहता हूँ। माँ, माँ।
4: क्या है बेटे?
0: माँ, बहू काशी जाना चाहती है, मुझे कॉलेज में काम है, मैं नहीं जा सकूंगा। उसकी ताई जा रही है, उसी के साथ चली जाएगी।
4: हाँ जी, बड़ी अच्छी बात है, वो लोग बड़े आदमी ठहरे, उनके साथ जाने से हमारा गौरव बढ़ेगा ना।
5: महिंदा, महिंदा, तुम साथ क्यों नहीं चले जाते।
0: मैं नहीं जा सकूंगा।
5: तो फिर साथ विनोद भाभी चली जाए तो कैसा रहेगा।
0: बिहारी, अपने मन की बात साफ साफ कहो, छल करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझ पर अंदर ही अंदर संदेह करते हो कि मैं विनोदनी से प्यार करता हूं। प्रेम मैं नहीं करता, बल्कि मैं तुम्हारे सामने कहता हूं कि तुम आशा से प्रेम करते।
5: महेंद्र, ईश्वर तुम्हें क्षमा करे। महेंद्र, मैं जा रहा हूं।
1: लाला जी, किरकिरी के साथ मैं भी काशी जाऊंगी।
5: नाना भाभी, ये ना होगा। मैं यहां का कोई नहीं हूं। मैं किसी बात में हस्तक्षेप करना नहीं चाहता। इससे भला नहीं होगा। तुम देवी हो, तुम्हें जो अच्छा लगे करो। मैं चलती हूं।
1: लाला जी, मैं देवी नहीं हूं, मैं देवी नहीं हूं। तुम्हारे जाने से किसी का भला नहीं होगा, पीछे मुझे दोष मत देना। समझ में नहीं आता, ऐसे स्पष्ट आरोप का भी प्रतिवाद बिहारी ने क्यों नहीं किया। पर अच्छा ही हुआ, इससे अब वो आशा से दूर चला गया। वो कई दिनों से यहां आए नहीं थे। महेंद्र ने जब कहा कि तुम आशा से प्रेम करते हो, तब उस समय बिहारी का चेहरा कैसा रक्तहीन हो गया था। मैंने बिहारी को एक पत्र लिखा। लाला जी, उस दिन तुम्हारा शुष्क मुख देखने के बाद

0: मैं निरंतर प्राण मन से कामना कर रही हूँ कि तुम स्वस्थ हो जाओ, जैसे थे वैसे ही। वो सहज हंसी, वो उदार वाणी फिर कब सुनूंगी? एक पंक्ति लिखकर मुझे जता देना तुम कैसे हो। तुम्हारी विनोद भाभी।
1: विनोद की चिट्ठी लेकर दरबान बिहारी के यहां गया तो मालूम हुआ कि बिहारी रात की गाड़ी से पश्चिम की ओर चला गया है। जब दरबान चिट्ठी लेकर वापस लौट रहा था तो उसे मैं मिल गया। मैंने वो चिट्ठी उससे ले ली और पढ़ने लगा। समझ में नहीं आता कि विनोद ने के मन की गति किस ओर है। तो क्या मैं विनोदनी से प्रेम नहीं करता कहकर मैंने जो उसका तिरस्कार किया है उसी के कारण अभिमानवश मेरी आशा छोड़ दूसरी ओर जा रही है। वो मेरे अधिकार से अलग चली जाएगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे उसे अपनी ओर खींचना ही होगा। हाँ, उसे अपनी ओर खींचना होगा। मुझे उसे अपनी ओर खींचना होगा। व्यर्थ खड़ी हो, भेंट नहीं होगी। लो, तुम्हारी चिट्ठी लौट आई है, मैं जा रहा हूं।
0: लेकिन चिट्ठी खुली हुई क्यों है? मैं पूछती हूँ, चिट्ठी खुली हुई क्यों है? समझी, बिहारी ने चिट्ठी खोली और पढ़कर वापस कर दी। बगैर एक पंक्ति लिखे मेरी चिट्ठी वापस कर दी। मैं अपने चारों ओर आग लगाकर सब भस्म कर दूंगी। मुझे सुख न मिला तो ना सही, लेकिन जिन्होंने मुझे कृतार्थता से भ्रष्ट किया है और समस्त संभावित संपदा से वंचित कर दिया, उन्हें परास्त कर धूल में मिला देने से ही मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा होगा। तभी मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा होगा।

0: बेटी देख रही हूं कि महेंद्र आजकल बड़ा विक्षिप्त सा रहता है। शायद बहू के चले जाने के कारण उसे अच्छा नहीं लग रहा। अब मुझसे तो सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाया नहीं जाता। तू ही महेंद्र की देखभाल किया कर बेटी।
1: जरूरत क्या है माँ?
0: अच्छा अच्छा तब मुझसे ही जो कुछ हो सकेगा करूंगी। चलो जरा देखो तो उसे।
1: नहीं नहीं माँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम मत जाओ, मैं जाती हूँ। जो तुम्हारी आज्ञा होगी करूंगी। कई दिन से तुम्हारे खाने पीने के समय हाजिर नहीं रह सकी, कोई गलती हो तो क्षमा करना।
2: कभी कभी ऐसी गलती का होना अच्छा है, क्योंकि बाद में ब्याज सहित वसूल किया जा सकता है।
1: महाजन बताएंगे कि ब्याज कितना हुआ।
2: खाने पीने के बाद हाजिरी को बात करके भी कुछ निकले गए।
1: तुम्हारा हिसाब कितना कठोर है, जो एक बार तुम्हारे हाथ में पड़ गया उसका फिर उद्धार नहीं।
2: हिसाब जो है, पर अदायगी में क्या मिल पाएगा?
1: अदायगी लायक यहाँ है ही क्या, तब भी तो बंदी कर रखा है।
2: किरकिरी, क्या ये तुम्हारे लिए जेलखाना है?
1: कौन जाने, बाद में तुमसे कौन जीत सकता है। अच्छा जाती हूँ, काम बहुत है।
2: अच्छा बंधन स्वीकार किया है तो जाती कहाँ हो?
1: जी जी छोड़ो, जिसे भागने का कोई रास्ता नहीं उसे बांधने की चेष्टा क्यों।
3: अरे आशा, तू बेटी, मैं तो मुझसे मिलकर गया ही था, फिर कुछ समय बाद तुम मेरे पास काशी चली आई। बेटी

0: कहीं कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं? सच बता, सच बता, महेंद्र अच्छी तरह तो है ना?
1: नहीं मौसी, ऐसा कुछ भी नहीं, सब ठीक है।
0: हे भगवान, भगवान सदा तुम्हें सुखी रखे। अरे हाँ, बिहारी का क्या हाल है बेटी? वो क्या ब्याह करेगा ही नहीं? उसकी तबीयत तो ठीक है ना?
1: उनकी बात मुझसे न पूछो।
0: अरे बता तू, क्या बात है?
1: वो मैं न बता सकूंगी।
0: बेटी बेटी सुन तो, सुन तो चुन्नी। हे भगवान, सोने जैसा लड़का, प्यारी में ऐसा क्या परिवर्तन हो गया जो चुन्नी आज उसका नाम सुनकर उठ गई? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, इलाहाबाद से कुंजी की सास आने वाली थी, शायद शायद वो ही आ गई। चुन्नी, चुन्नी बेटी, लाल टेन लेकर नीचे जा और दरवाजे खोल दे।
1: अच्छा मासी, खोलती हूँ।
2: हाँ। भाभी जी, मैंने तो सुना था कि तुम काशी नहीं आओगी।
1: मौसी मौसी मौसी मौसी मौसी मौसी, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ मौसी, उन्हें अभी यहाँ से चले जाने को कह दीजिए।
0: किसे चुन्नी? वो किसे?
1: वो बिहारी लाला जी है ना, वो यहाँ भी आ गए मौसी।
0: अच्छा, बिहारी बिहारी बिहारी।
2: काकी, मैं तुम्हारे मंगल चरणों का आश्रय लेने आया था।
0: क्या?
2: बस कुछ ना कहो, चलता हूं। प्रणाम।
1: सुनो, हम तुम्हें लिख रहे हैं। बिहारी लाला जी एकाएक आज शाम यहाँ चले आए थे। तुम जल्दी आकर हमें ले जाओ, थाउची के लौटने का भी कुछ नहीं। तुम जल्दी आकर हमें ले जाओ, हमें ले जाओ।
3: गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बांग्ला उपन्यास चोखेर बाली का रेडियो नाट्य रूपांतरण आंख की किरकिरी का पहला भाग अभी आपने सुना। रूपांतरकार एवं निर्देशक नंदलाल शर्मा। ये हमारे आकाशवाणी जयपुर केंद्र की प्रस्तुति थी।
4: तराने नए पुराने।